एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत कान हर बूंद बसोरो मावल कोसम बसंत गणंत न आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुदर त्यान ज्ञान सतगुर के काव जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे सोत अपराध करत है जेते जननी चीतना राखस तेते रा मैया हो बारक तेरा काहे न खंडस अवगण मेरा जे अत करोप करे कर ताया ता पी चीतना राखस माया चिंत पवन मन पर्यो हमारा नाम बिना कैसे उतर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निसतारे दर्शन प्यासी दिन सरात चित भवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत।
सुखह

गए मशक्कत कार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वस्तु दिया गए बिन बता।
1: राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद।

0: जा सुख दाम ना हुई तू करता करना मैं नाही जाओ करी ना होई बलहारी कुदर तपस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन की ती सो पार पया
1: कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा सोदर राग आसा

हा में अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया। तुद डिठे सच्ची पात साह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहद साहु। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहद साहु। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनासरी महला तीजा, घर दूजा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहो तन अखुट ना निखुट ना जाए। पूरै सतगुर दिया दिखाई, एहो तन अखुट ना निखुटै ना जाए। पूरै सतगुर दिया दिखाई, अपने सतगुर कौ सद बल जाई। गुर किरपा ते हर मन वसाई। से धनवंत हर नाम लेवलाए, गुर पूरै हर धन परगासिया। हर किरपा ते वसै मन आए। रहाओ अवगुण काट गुण हृदय समाए,
कै सहज सुभाई। पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी।

नाम अमोलक न पाया जाए, गौर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गौरमति घाट प्रगट होए।

करे सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्दवा जंत भेरी रहाओ, सहस्तव नैन नन नैन हह तोहे कौ, सहस मूरत नन एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, तिस द चानण सब मह चानण होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग कौ, होए जाते तेरे नाए वासा, राग गौड़ी पूरबी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लेव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजुलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ, साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हौ मैं कंडा हे, ज्यो ज्यो चलह चुभै दुख पावह, जमकाल सहह सिर डंडा हे, हर जान हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे, राग गौड़ी पूरबी महला पंजवा, करो बेनंती सुनह मेरे मीता, संत टहल की बेला, ईहा खाट चलहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औध कटै दिन सुरैणारे, मन गुरमिल काज सवारी रहाओ, इह संसार विकार संसेमह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पियावै इह रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजह, हर गुरते मन है बसेरा, निज घर महल पावह सुख सहजे,

मशक्कत काल नानक ते मुख उज्जले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो, सर्व सुख हर नाम डाय।
1: गुरप्रसाद नानक मत पाई सलोक, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खिले सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां।

बोले आल पताल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जेतन पाईए नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तो पाईए होर हिकमत हो।

पौड़ी सेव कीती संतोखई जिनी सचो सच ध्याया उन्नी मंदे पै न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़ै बंधना अनपाणी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित।

0: संतोख सरोवर बसे, अमे रस रसन प्रकाशे, मिलत शांति उपजे, दुरत दुरंतर नासे, सुख सागर पायो तिंत, हर मग न हुटे, संजम सत संतोख, सील स्नाहो मफुटे, सतगुर परमान बिदने सिरयो, जग जस तोर बजायो, गुर रामदास कल उचरे, तें हर प्रेम पदार्थ पायो, प्रेम पद परवा जग जितो सतगुर परमान, मन एक ते आयो, तन तन सतगुर अमरदास, जिन नाम दृढ़ायो, नवनिध नाम निदान, रिद्ध सिद्ध ताकी दासे, सहि सरोवर मिलियो, पुरख पेट्यो अविनाशी, आदले भगत जित लग तरे, सो गुर नाम दृढ़ायो, गुर रामदास कल उचरे, तें हर प्रेम पदार्थ पायो।
1: प्रेम भगत परवा, प्रीत पुबली ना हुट, सतगुर शब्द अथा अमे तारा रस गुट, मत माता संतोख पिता, सर सह समायो अयुनी संभवयो, जगत गुर बचन तरायो, अवगत अगोचर अपर पर, मन गुर शब्द वसायो, गुरु रामदास कल उचर, तें जगत उदारन पायो, अवगत अगोचर अपर पर, मन गुर शब्द वसायो, गुरु रामदास कल उचर, तें जगत उदारन पायो।
2: जगत उदार नव निदान, भगतें पव तारन, अमृत बूंद हर नाम, बिसकी बिखे निवारन, सहज तरोवर फलियो, ज्ञान अमृत फल लागे, गुर प्रसाद पाई है, तन ते जन बड भागे, ते मुक्ते पए, सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो, गुर रामदास कल उचरे, ते शब्द निशान बजायो, गुर रामदास कल उचरे, ते शब्द निशान बजायो।
3: सेज सदा सहचामान, संतोख सराय चो, सदा सील सुनाहो सो है, गुरु सब समाचरयो, नाम टेक संगाद बो है, अजुन्यो पल अमल सतगुर संग निवास, गुर रामदास कल उचरे, तू सहज सरोवर बास, अजुन्यो पल अमल सतगुर संग निवास, गुर रामदास कल उचरे, तू सहज सरोवर बास।

0: सत संतोख समाचार अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देह सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनयावै।
1: सतगुर नाम एकले मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारण तरण खेणा मातर जाको दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जिया न सबन दाता अगम ज्ञान वेखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवै जियो जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सत गुर नाम एकले मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो।
2: धर्म कर्म पूरा सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक लिवलाई है हुन जाने को तेरा पार निर्भौ निरंकार अकथ कतनहार तुझे बुझाई है भ्रम पूले संसार छुटो जुनी संगार जम को न दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म कर्म पूरा सतगुर पाई है।
3: एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा।

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटियै तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहो जिस पास बैठिया सोही है

सुहि महला पंजवां गुर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी गुर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी सफल मूरत दर्शन बलहारी चरण कमल मन प्राण अधारी रहा साध संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन।

लोभ मोत जारी दृढ़ नाम दान इस्नान सुचारी कहो नानक यह तत् बिचारी राम नाम जप पार उतारी कहो नानक यह तत् बिचारी राम

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोविंद ना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन।

की। आनंद साहिब जी की अरदास, उल चौका मुआफ करनी। सच्चे पातशाह जीओ, जिन्हां जिन्हां गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है, तिन्हां दी अरदास, समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों घरों सिखी सिदक परोसा, नाम दान बख्शना, शुभ भावनावां पूरियां करनिया। आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है, दर परवान होवे परवान होया प्रसाद, संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो, सुख होवे